0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।
2: Choice FM 90.4 MHz।

0: को हवा लागे छ
1: देखे छैन तराई को हवा दिदैछु
2: आई वान्ट टु सी अ स्माइल अन योर फेस

के तराई के हिमाल, के पहाड़ के तराई के हिमाल, जहाँ को भए पनि जहाँ को रहे पनि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएर बन्नु छ।

0: के
1: भो के के भो मेरो पनि एउटा कुरो छ क्या दिदी एकछिन क्या के भो के भो के भन त
0: हेर्न चौधरीमा एउटाले भेट्न बोलाएर आउँदै आन
2: चौधरीमा
1: खत्तम भयो बर्बाद
0: होइन मलाई झुक्याउने यही बजारो छ कि क्या हो बगलास त भरे घर त आउला नि कम्ता चित्त दुख्या छ
3: Choice FM 90.4 MHz